फरमाइश फरमाइश और फरमाइश आपकी फरमाइश है सराखों पर. यू आर लिसनिंग MGM 90.8 FM और इस वक्त ना तो मैं आपकी फरमाइश पूरी करता हूँ. तो आज के गाने की फरमाइश आई है सतीश रुद्रवार जी की तरफ से इस गाने के लिए.

गाने का मतलब क्या बताया गया कि दूर से पहाड़ खूबसूरत लगते हैं लेकिन पास जाने पर बस एक पत्थर के चट्टान होते हैं। दुख और सुख की एकदम मिक्स स्टोरी है ये गाना। ये बताता है कि दुख के पीछे ही सुख छुपा होता है, बस देखने का नजरिया चाहिए। इस गाने को जसपाल सिंह ने अपनी आवाज दी थी। ये गाना जीवन के हर एक दृष्टिकोण और मुश्किल परिस्थितियों में भी हमें पॉजिटिव एनर्जी और पॉजिटिविटी खोजने की सलाह देता है। सावन को आने दो इस फिल्म से गाना था जो कि आई थी 1979 में। तो चलिए फिर अभी गाना फरमाइश पर एंजॉय करते हैं। बाय द वे दोस्तों, आपकी भी फरमाइश हो तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो 9359320080 इस व्हाट्सएप नंबर पर। फिलहाल ये गाना एंजॉय कीजिए ऑन MGM 90.8 FM।

अगर आपके जेब में पैसा है तो आपको कोई रोक नहीं सकता, और ये सच बात है। You are listening MGM 90.8 FM, RJ अदनान आपके साथ है। और जिन लोगों के जेब में पैसा नहीं है उनको ही रूल्स और रेगुलेशन होते हैं, उनको ही गाड़ी चलाते वक्त सीट बेल्ट पहनना पड़ती है, उन्हें ही हेलमेट पहनना पड़ते हैं, उन्हें ही सिग्नल पर रुकना पड़ता है, उन्हें रॉन्ग साइड से नहीं जाना पड़ता है जिनके पास पैसा ना हो। और जिनके जेब में पैसा हो तो ये रूल्स और रेगुलेशन ये उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है, वो रूल्स तोड़ते हैं और पुलिस वाले के हाथ में हरी पत्ती देते हैं और चले जाते हैं, उनका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। ऐसा साबित हो गया है बहुत बार, लेकिन इंसान अपनी गलती नहीं मानता ना। तो आप प्रूफ के साथ एक वीडियो वायरल हो रहा है अपने शहर का एक क्रांति चौक में, जहाँ पर एक ट्रैफिक पुलिस वाले ने दो गाड़ियां पकड़े थे और उसके बाद कार्रवाई करने के बदले जिनकी गाड़ी पकड़ी गई थी उनसे रिश्वत ली गई हरी पत्ती की, और उसके बाद वो गाड़ी छोड़ दी गई। ऐसा सरेआम हो रहा है और इसका वीडियो वायरल हो रहा है। पुलिस डिपार्टमेंट कह रहा है कि हमने उस बंदे को सस्पेंड किया है, कार्रवाई की है, लेकिन वो एक है। ऐसे कितने सारे पुलिस है जो कि रिश्वत लेकर छोड़ देते हैं, और ये सभी की नजरों के सामने, भाई किसी से कोई छुपा नहीं है। तो वही कह रहा हूँ ना, अगर आपके जेब में पैसा होना आप बिंदास रूल्स ब्रेक कीजिएगा। आपको फाइन भरने की भी जरूरत नहीं है, फाइन 1,000-2,000 का होता है, आप बस 200-400 रुपए थमा दीजिएगा हाथ में और आप छूट जाओगे ना, अगर आप ईमानदार हो तो। भाई ये सब रूल्स और रेगुलेशन आपके लिए है, ईमानदार हो रूल्स फॉलो करो, और जेब में पैसे हो तो ब्रेक करो, बाकी आपकी मर्जी। स्टे ट्यून।

0: हमारे शहर की पहचान एक और है, वो हमारे शहर का इतिहास है और हमारी जिम्मेदारी है। आप सुन रहे हो आरजे अदनान के साथ MGM 90.8 FM। और जरा सोचिए, जिस पुल पर हम रोज बिना सोचे समझे गुजरते हैं, वो पुल लगभग 350 साल पुराना हो सकता है। जी हां, अपने शहर में मकाई गेट है जो कि 350 साल पुराना हो चुका है और आज भी हजारों लोगों का बोझ उठाता है। लेकिन वक्त के साथ इस पुल पर ट्रैफिक बढ़ता गया और अब एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसके नीचे कुछ जगहों पर दरारें नजर आ रही है। इसी वजह से इस पुल को मेंटेनेंस करने की जरूरत आ चुकी है। पुरातत्व विभाग ने एक प्रपोजल तैयार किया है जिसके अंदाजे से लगभग 3 करोड़ रुपए इसको खर्चा आ सकता है, लेकिन अलग अलग डिपार्टमेंट के बीच जिम्मेदारियों की वजह से काम बस शुरू होने का नाम ले ही नहीं रहा। जो अपने शहर की विरासत है, जो आइडेंटिटी है, उसको बरकरार रखती है ये अपने शहर के ब्रिजेस हो, यहाँ के गेट हो और इस शहर का इतिहास हो। बाय द वे, जरा सोचिए अगर ये पत्थर बोल पाते तो कितनी कहानियां सुनाते। मुगल दौर देखा है, निजाम का वक्त देखा है, आजादी देखी है और आज का मॉडर्न शहर भी उसने देखा है। ये सिर्फ पत्थरों का पुल नहीं है, ये हमारी शहर की यादों का पुल है। इसलिए जरूरत है फिलहाल इसको मेंटेनेंस की। बस ये एक ब्रिज नहीं, अपने शहर में बहुत सारे ऐसे ब्रिजेस हैं जो कि बहुत सालों से है, अपने शहर का इतिहास लेकर वो खड़े हैं। ब्रिज हो, गेट हो, कुछ किले हो, तो इन सभी को फिलहाल रिनोवेशन की जरूरत है। आई होप कि जल्द से जल्द इसका रिनोवेशन हो जाए और अपने शहर का इतिहास ऐसे ही बरकरार रहे हम सभी के नजरों के सामने। अभी कब तक काम शुरू होगा ये तो कुछ आइडिया नहीं, जल्द से जल्द हो जाए इतनी एक तमन्ना है। स्टे ट्यून्ड। पाळीव प्राण्यांच्या आरोग्याची आता खास काळजी MGM पेट केअर पेट क्लिनिक। आरोग्य तपासणी, उपचार, शस्त्रक्रिया, लसीकरण आणि अनेक पशुवैद्यकीय सेवा एकाच ठिकाणी। MGM क्रिकेट स्टेडियम जवळ N6। कॉन्टॅक्ट नंबर 9860679130। MGM पेट केअर।
1: कायद्याच्या क्षेत्रात उज्ज्वल करिअर घडवायचे, मग MGM युनिव्हर्सिटी आहे तुमच्यासाठी सज्ज।
2: 12वी नंतर 5 वर्षांचा इंटिग्रेटेड BBA LLB आणि पदवी नंतर 3 वर्षांचा LLB हा पदवी प्रोग्राम निवडा। पदव्युत्तर शिक्षणासाठी LLM मध्ये क्रिमिनल तसेच कॉन्स्टिट्यूशन किंवा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मध्ये 2 वर्षांचा तर बिझनेस लॉ मध्ये 1 वर्षाचा विशेष कोर्स उपलब्ध आहे। यासोबतच टॅक्सेशन आणि लेबर लॉ मध्ये करिअर ओरिएंटेड डिप्लोमा प्रोग्राम करण्याची सुवर्ण संधी मिळवा।
1: अधिक माहितीसाठी भेट द्या स्कूल ऑफ लीगल स्टडीज अँड रिसर्च MGM युनिव्हर्सिटी किंवा विजिट mgmu.ac.in।
3: फार्मसी मध्ये गुणवत्ता आणि संशोधन पूर्ण शिक्षणासाठी
4: MGM विद्यापीठाच्या डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल सायन्स मध्ये प्रवेश घ्या,
3: जिथे डिप्लोमा इन फार्मसी अँड बॅचलर ऑफ फार्मसी मध्ये ऍडमिशन सुरू। ऑल्सो डायरेक्ट ऍडमिशन इन बी फार्मसी सेकंड इयर। अवेल अट्रॅक्टिव्ह स्कॉलरशिप्स,
4: अत्याधुनिक अशी लॅबोरेटरी, उच्च शिक्षित आणि अनुभवी स्टाफ, भव्य दिव्य असा MGM कॅम्पस। गुणवत्ता आणि दर्जेदार शिक्षणासाठी आजच प्रवेश निश्चित करा।
3: फॉर ऍडमिशन कॉन्टॅक्ट 9371714265 और विजिट www.mgmu.ac.in।
5: Admission open MGM University School of Engineering and Technology. Programs BTech 4 years after HSC, Computer Science and Engineering, IoT, Cyber Security including Blockchain Technology, Computer Science and Engineering, Cyber Security, Electronics Engineering, VLSI Design and Technology, Electrical Engineering, Robotics and Automation. For admission visit mgmu.ac.in or contact 9371714253 or visit MGM Campus N6 Sirko, Chhatrapati Sambhajinagar।

इंडियन रेलवे से जब हम ट्रैवल करते हैं और कुछ असुविधा के लिए हम इंडियन रेलवे को कोसते हैं ना, तो थोड़ा हमारे गिरेबान में भी हमने झांकना चाहिए। आप सुन रहे हो आरजी अदनान के साथ MGM 90.8 FM। आप कह रहे हो कि यार खुद के गिरेबान में क्यों झांके, हमने क्या किया है भाई साहब? दूसरों पर उंगली उठाने के पहले खुद की तरफ भी चार उंगलियां होती है, ये याद रखिएगा। क्योंकि एक रिपोर्ट के हिसाब से इंडियन रेलवे में जो ट्रैवल करते हैं, थर्ड एसी, सेकंड एसी और फर्स्ट एसी, आप इन तीनों में ट्रैवल करने वाले लोग थोड़े पैसे वाले और उम्दा कैटेगरी के, ऐसा माना जाता है कि जिनके पास पैसा होता है जो एसी में ट्रैवल करना पसंद करते हैं और टिकट के पैसे ज्यादा है तो सुविधाएं भी अच्छी खासी मिलती है। तो इन्हीं लोगों ने क्या किया है पिछले 4-4.5 साल के अंदर, तकरीबन तकिया का कवर, चादर, टॉवल, ऐसा पूरा चोरी कर दिए गए है। और 1-2 हजार के नहीं या 2-3 लाख रुपए के नहीं, तकरीबन 4.5 साल के अंदर 100 करोड़ से भी ज्यादा कीमत की सभी चीजें थी, इनको चोरी कर दिया गया है पैसेंजर ने। इस तरीके से चोरियां हो रही है। और यह कौन करता है? वही जो ट्रैवल करते हैं ना फर्स्ट, सेकंड और थर्ड एसी में, तो उसमें बैठे वाले कुछ लोग बहाने बहाने से यूं ही अपने बैग में डाल देते ये सब चीजें। और इससे अब अक्सर हम कहते हैं कि यार इंडियन रेलवे हमारे लिए ये नहीं करती, वो नहीं करती, और जो कुछ करती है ना वो हम उसको ठीक से नहीं रखते। चोरी चपाटी कम कीजिएगा। होटल में जाने के बाद तो करते ही थे लोग, होटल रूम से कंघी चुरा ली, टूथपेस्ट चुरा लिया, किसी ने तो प्रेस चुरा ली, किसी कोई कप चुरा लेता है। अब इंडियन रेलवे में भी ये सब शुरू हो गया है, तो संभलिए जरा और ये चोरी की आदतें बंद कीजिएगा। एंड सभी को पता है कि किस किस ने क्या क्या चुराया है। जो लोग हंस रहे हैं ना, मैं समझ गया कि उन्होंने भी ये कांड किया ही होगा। सो नेक्स्ट टाइम जरा संभल के रहिए एंड बाकी सुनते रहिए।

on MGM 90.8 FM. किसी से बात कर रही हो तो पहले कैसे लेटर लिखना पड़ते थे, एक वेटिंग लिस्ट में रुकना पड़ता था एसटीडी पीसीओ के, लेकिन अब ऐसा कुछ है नहीं। तो सोशल मीडिया के जमाने का फायदा उठाते हैं और हम सभी लोग ना तो 24/7 एक साथ कनेक्ट रह सकते हैं। मेरा इंस्टा आईडी है आरजे अदनान। आपके पास कुछ प्रॉब्लम्स हो, कुछ कहना हो, आपको दिल की बात शेयर करनी हो, हैशटैग आपको कोई नहीं सुन रहा हो, तो मेरी जान मैं हूं आपको सुनने के लिए और आपके प्रॉब्लम का हल निकालने के लिए। देखो मैं आपको जज नहीं करूंगा, लेकिन आपके दिल में जो बात हो, मन हल्का करना हो, तो आप झिझक मुझे मैसेज या कॉल कर सकते हो। आपकी बातें मेरे दरमियान ही रहेंगी और वो कहीं और जाएंगी नहीं। बस मन हल्का होना बहुत जरूरी है। आज के वक्त में क्या है पता है क्या, सुनने वाले बहुत कम है। हमें बताना तो बहुत कुछ होता है लेकिन सुनने वाला कोई मिलता ही नहीं है। आर्ट ऑफ लिसनिंग कहीं दिखाई नहीं देती। हर किसी को कुछ बताए तो वो कुछ ना कुछ सोल्यूशन देता है। भाई हमें सोल्यूशन नहीं चाहिए, बस सुन के ले यार तू। तो वही सुनने का काम मैं करता हूँ ना, आपका भाई आपका दोस्त बनकर अदनान का वही काम है। सो बेझिझक कॉल कीजिएगा 8421247339 इस नंबर पर। नंबर फिर से एक बार सुनिए 8421247339। इसी के साथ आप मुझे इंस्टा पर डीएम भी कर सकते हो आरजे अदनान इस इंस्टा पेज पर। अब इंस्टा पर आ ही गए ना तो वहां पर एक ग्रीन कलर का बटन है जिसको फॉलो बटन कहते हैं, तो उसे भी प्रेस कीजिएगा ताकि आप मुझे फॉलो कर सके। वहां पर भी मैं आपको ना तो एंटरटेनमेंट प्रोवाइड कर सकूं। सो इतनी दरख्वास्त है कि फॉलो भी कीजिएगा और अपनी बातें भी शेयर कीजिएगा। वादा करता हूं कि सुकून के साथ सॉल्यूशन भी आपको मिल ही जाएगा। बाकी आपका प्यार बरकरार रखिए और सुनते रहिए MGM 90.8 FM।

हाँ जी, क्या हाल चाल? एकदम मस्त, बढ़िया। All is well. RJ and Nanak morning show. Freshness light radio ka flow. On MTM 90.8 FM. RJ Adnan आपके साथ है on MTM 90.8 FM. बड़ा वक्त हो चुका है मेरा था कहने का, यानी कि RJ Adnan आपके साथ था, टाप टाटा बाय बाय कर रहा है, मैं तो चला अब अपनी गली। आज का शो आपको कैसा लगा? आई होप कि पसंद आया होगा, तो आपका फीडबैक हम तक जरूर पहुंचाइएगा DM कीजिए का इंस्टा पर RJ Adnan इस इंस्टा पेज पर, या फिर व्हाट्सएप कीजिए 9359320080। इस नंबर पर आपका फीडबैक बहुत जरूरी है, और इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कीजिएगा, फॉलोअर्स भी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। बाकी तो अपना ख्याल रखिएगा, आराम से गाड़ी चलाइए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, और फुल ऑन एंटरटेनमेंट के लिए सुनते रहिए MGM 90.8 FM। मिलते अगले अपने शो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय, एंड स्टे ट्यून्ड ऑन MGM 90.8 FM।

0: की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये दूरियां,
0: अपना रेडियो अपनी बातें, गीत खबरें जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

0: की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये
0: अपना रेडियो, अपनी बातें, गीत, खबरें, जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

0: की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये दूरियां,
0: अपना रेडियो अपनी बातें, गीत खबरें जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

0: got it. Thank you. Thank you.
1: हर दिल की आवाज बने.
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है.
1: MGM 90.8 FM सुने. बातें हो दिल से दिल तक. अब दूरी कोई न रहे. अपना रेडियो अपनी बातें. गीत खबरें जिंदगी के जज्बात. MGM 90.8 FM साथ है तो बात है.

0: नमस्कार, छत्रपती संभाजी नगर
1: तुम्ही ऐकत आहात MGM 90.8 FM।
2: अच्छा तो हम चलते हैं।

0: आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ, जहां हर शाम होती है थोड़ी सी म्यूजिक, थोड़ी सी मस्ती और ढेर सारी अच्छी बातों के साथ। दिन भर की भागदौड़ के बाद अब वक्त है खुद को थोड़ा रिलैक्स करने का। चाहे आप घर पहुंच रहे हों, दोस्तों के साथ हो, फिर सफर में हो, अगर 2 घंटे हम रहेंगे आपके साथ। आज के शो में होंगे आपके पसंदीदा गाने, कुछ दिलचस्प बातें और ऐसे गाने जो आपकी शाम को और भी खूबसूरत बना देंगे। अगर कोई गाना आप किसी अपने के लिए डेडिकेट करना चाहते हैं या कोई खास मैसेज भेजना चाहते हैं तो अभी हमें मैसेज करिए ऑन माय इंस्टा हैंडल। मेरी इंस्टा आईडी है rjmanisha_, हो सकता है आपका मैसेज और आपका पसंदीदा गाना आज पूरे शहर के साथ ऑन ईयर हो। तो तैयार हो जाइए एक शानदार म्यूजिक सफर के लिए, मुस्कुराइए, रिलैक्स कीजिए और इस खूबसूरत शाम का मजा लीजिए। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। अब बिना किसी इंतजार के बढ़ते हैं आज के पहले शानदार गाने की ओर, सिर्फ यही आपके फेवरेट रेडियो स्टेशन पर, ओनली ऑन MGM90.FM। साथ है तो बात है।
1: फक्त इंजिनियर नव्हे तर फ्यूचर रेडी प्रोफेशनल बनायचे,
2: मग निवडा MGM विद्यापीठातील केमिकल इंजिनियरिंग। सोबत शिका AI इन केमिकल इंजिनियरिंग, AIML, डेटा सायन्स, बिझनेस अनालिसिस आणि फिनटेक स्पेशलायझेशन,
1: जागतिक दर्जाच्या लॅब्स, हँड्स ऑन प्रॅक्टिकल लर्निंग आणि NEP 2020 नुसार आधुनिक अभ्यासक्रम,
2: डेडिकेटेड ट्रेनिंग अँड प्लेसमेंट सपोर्ट, MNC कोलॅबोरेशन्स, इंडस्ट्री विजिट्स आणि टॉप केमिकल इंडस्ट्री मध्ये इंटर्नशिप्स,
1: लिमिटेड सीट्स। आजच MGM विद्यापीठ केमिकल इंजिनिअरिंग डिपार्टमेंटला भेट द्या किंवा कॉल करा 9890-71-78-44।
3: नैराश्य, बेचैनी, झोपेची समस्या, भीती, चिडचिड, आता मानसिक आजार लपवायचे नाहीत, उपचार घ्या, समाधान शोधा।
4: डॉक्टर अमोल पाथ्रीकर, मानस उपचार व व्यसन मुक्ती तज्ञ।
3: सततची चिंता, अतिविचार करणे, भीती वाटणे, धास्ती बसणे, भास होणे, घाबरणे, संशय करणे, शंका येणे, चिडचिडपणा, एकच गोष्ट पुन्हा पुन्हा करणे, मंत्रचाळेपणा, व्यसनधीता, लहान मुलांमधील व वृद्धांमधील मानसिक लक्षणे, वैवाहिक समस्या, या सर्व समस्यांवर उपचार आणि समाधान। समुपदेशन, व्यसन मुक्ती, पुरुष व महिला आंतररुग्ण सुविधा उपलब्ध, आजच भेट द्या।
4: उत्कर्ष क्लिनिक, हर्सुल टी पॉइंट, HP पेट्रोल पंप शेजारी, जळगाव रोड, छत्रपती संभाजीनगर, आंतररुग्ण विभाग, दिशा हॉस्पिटल, समुपदेशन काउंसिलिंग सेंटर, संत तुकाराम नाट्यगृहाच्या जवळ, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट 8888992688।
5: क्या आप ऐसा करियर चुनना चाहते हैं जहां आपके भविष्य के साथ समाज का भी भविष्य बदले? तो आइए MGM यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी साइंस में, जहां डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, BSc ऑनर्स कम्युनिटी साइंस विद रिसर्च और आल्सो MSc स्पेशलाइजेशन इन फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स, एक्सटेंशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज विद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एंड रिसर्च ओरिएंटेड एजुकेशन। एडमिशन ओपन फॉर 2026-27। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल ऑन 7620322186 और 7017085546। MGM यूनिवर्सिटी, NC3 को, छत्रपति संभाजीनगर।
6: डिनर का मूड हो या फैमिली आउटिंग, टेस्ट और MBS दोनों चाहिए तो आ जाइए मीनास किचन। यहाँ मिलेंगी डिलीशियस वेज नॉनवेज सूप, टेस्टी स्टार्टर्स, मलाई टिक्का कबाब, चिकन तंदूरी, मटन बुना और मीनास स्पेशल चिकन बिरयानी, रूफटॉप एम्बियंस, अमेजिंग टेस्ट और फुल फैमिली वाइब्स। मीनास किचन, फैमिली गार्डन रेस्टोरेंट एंड चीयर्स कॉर्नर, बॉम्बे हाइट्स, 9th फ्लोर, बीड बायपास रोड, छत्रपति संभाजीनगर।
7: कॉस्मेटिक टेक्नॉलॉजीच्या UG आणि PG साठी ऍडमिशन मिळवा। BTech आणि MTech कॉस्मेटिक टेक्नॉलॉजी साठी MGM युनिव्हर्सिटी मध्ये बेसिक अँड अप्लाइड सायन्सेसच्या अंतर्गत आजच आपला प्रवेश निश्चित करा,
8: ज्यामध्ये सर्व प्रकारच्या कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्सचे फॉर्म्युलेशन, रॉ मटेरियल्स, त्यांची केमिस्ट्री आणि अनालिसिस सोबतच न्यू ऍडव्हान्स टेक्नॉलॉजी ही शिकण्यास मिळेल। शिवाय विविध नामांकित कंपन्यांमध्ये प्लेसमेंटची हमी सुद्धा।
9: ऍडमिशन्स ओपन फॉर 2025-26। MGM युनिव्हर्सिटी, N6 सिडको। विजिट MGMU.AC.IN, कॉल 9503 08-2913.

सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। कहते हैं शहर कभी सोता नहीं, ऊंची ऊंची इमारतें, तेज रफ्तार ट्रैफिक, हर किसी के पास कोई ना कोई मंजिल। यही है हमारा कॉन्क्रीट जंगल। इस कॉन्क्रीट जंगल में हम रोज दौड़ते हैं ऑफिस, कॉलेज, बिजनेस और जिम्मेदारियों के बीच, लेकिन इस भाग दौड़ में कई बार हम छोटी छोटी खुशियाँ भूल जाते हैं। सुबह की ताजी हवा, किसी अपने के साथ 2 मिनट की बातचीत या फिर अपनी पसंद का एक गाना, ये छोटी छोटी बातें ही दिन को बेहतर बना देती है। जिंदगी सिर्फ काम करने का नाम नहीं है, बल्कि हर दिन कुछ पल अपने लिए निकालना भी उतना ही ज़रूरी है। इसलिए अगर आज का दिन थोड़ा मुश्किल रहा हो तो उसे यही छोड़ दीजिए, इस वक्त बस रिलैक्स कीजिए और म्यूज़िक को अपना साथी बनाइए। हम कोशिश करेंगे कि इस कॉन्क्रीट जंगल की भागदौड़ के बीच आपकी शाम में थोड़ा सुकून, थोड़ी मुस्कान और ढेर सारा अच्छा म्यूज़िक लेकर आए। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा, आप सुन रहे हैं दिल से। अब वक्त है अगले शानदार गाने का। आवाज जरा सी और बढ़ाइए और इस खूबसूरत शाम का आनंद लीजिए। ओनली ऑन MG 90.8 FM, साथ है तो बात है।

आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से, और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। शाम धीरे धीरे रात की ओर बढ़ रही है। शहर की सड़कों पर अब रोशनी जगमगा रही है। हर तरफ चमकती हुई सिटी लाइट्स, हल्की सी ठंडी हवा और एक अलग सा नाइट वाइब। सच कहे तो रात का अपना ही एक खूबसूरत जादू होता है। कोई ऑफिस से घर लौट रहा होता है, कोई दोस्तों के साथ चाय या कॉफ़ी एंजॉय कर रहा होता है, तो कोई अपनी बालकनी में बैठकर बस इस खूबसूरत शाम को महसूस कर रहा होता है। और ऐसे हर पल का सबसे अच्छा साथी होता है अच्छा म्यूज़िक। कई बार दिन कितना भी बिजी क्यों ना हो, रात हमें थोड़ा रुकने, मुस्कुराने और खुद से मिलने का मौका देती है। बस एक पसंदीदा गाना, एक सुकून भरा पल और सारी थकान जैसे धीरे धीरे दूर होने लगती है। तो जहाँ भी है, जिस मूड में भी है, इस पल को एंजॉय कीजिए। शहर की इन खूबसूरत रोशनियों के साथ अपनी मुस्कान भी चमकने दीजिए, क्योंकि ज़िंदगी की सबसे प्यारी यादें अक्सर ऐसी ही शांत और खूबसूरत शामों में बनती है। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा, आप सुन रहे हैं दिल से। अब वक्त है एक और शानदार गाने का। आवाज़ थोड़ी सी बढ़ाइए और इस खूबसूरत सिटी लाइट्स, नाइट वाइब्स वाली शाम को म्यूजिक के साथ और भी खास बनाइए। ओनली ऑन MG 90.8 FM, साथ है तो बात है।

सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। अगर आप इस वक्त सड़क पर हैं और घर की तरफ जा रहे हैं तो सबसे पहले अपना और अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखिए। मंजिल ज़रूरी है लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है सुरक्षित घर पहुंचना। ट्रैफिक में जल्दबाजी करने से कुछ मिनट तो बच सकते हैं लेकिन एक छोटी सी लापरवाही बड़ा नुकसान भी कर सकती है, इसलिए गाड़ी चलाते समय सीट बेल्ट ज़रूर लगाइए। अगर दो पहिया वाहन चला रहे हैं तो हेलमेट पहनिए और मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करने से बचिए। याद रखिए हॉर्न कम बजाइए, ध्यान ज़्यादा रखिए, ट्रैफिक सिग्नल का पालन कीजिए और दूसरी गाड़ियों का भी सम्मान कीजिए। सड़क पर आपकी एक जिम्मेदारी किसी की ज़िंदगी सुरक्षित बना सकती है। अगर आप थके हुए हैं तो थोड़ा रुक कर आराम कर लीजिए और अगर मौसम ख़राब है तो अपनी स्पीड अपने आप कम कर दीजिए। सुरक्षित ड्राइविंग सिर्फ आपका नहीं आपके परिवार की मुस्कान का भी सवाल है, तो जहाँ भी है आराम से चलिए, मुस्कुराते रहिए और म्यूज़िक का मज़ा लेते रहिए। हम चाहते हैं कि आपकी शाम अच्छी बीते और आप सुरक्षित घर पहुँचे। एंड ऑफ कोर्स अब वक्त है और कुछ शानदार गानों का। सीट बेल्ट बांध लीजिए, मुस्कुराइए और म्यूज़िक के साथ अपने शाम को और भी खूबसूरत बनाइए। ओनली ऑन एमजी 90.8 FM, साथ है तो बात है।

आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। अगर आप इस वक्त हाईवे पर ड्राइव कर रहे हैं तो ये बात आपके लिए बहुत ज़रूरी है। लंबी और सीधी सड़क पर लगातार गाड़ी चलाते चलाते कई बार ऐसा होता है कि हमारा दिमाग एक ही चीज़ पर टिक जाता है। इससे आम भाषा में हाईवे हिप्नोसिस कहा जाता है। इस दौरान आँखें खुली रहती है लेकिन ध्यान थोड़ा भटक सकता है। कई किलोमीटर का सफ़र तय हो जाता है और बाद में याद भी नहीं रहता कि रास्ता कैसे निकल गया। यही वजह है कि लंबे सफ़र में थोड़ी थोड़ी देर पर खुद को अलर्ट रखना बहुत ज़रूरी है। उबासी आ रही है, आँखें भारी लग रही है या ध्यान भटक रहा है तो इसे नज़रअंदाज मत कीजिए। किसी सुरक्षित जगह पर गाड़ी रोकिए, थोड़ा आराम कीजिए, पानी पीजिए या थोड़ा टहल लीजिए। अगर ज़रूरत हो तो 15-20 मिनट की छोटी सी नींद भी आपको फिर तरोताज़ा कर सकती है। याद रखिए, कोई भी काम या मंजिल आपकी सुरक्षा से बढ़कर नहीं है। आपके घर पर कोई आपका इंतज़ार कर रहा है, इसलिए सुरक्षित पहुंचना सबसे ज़रूरी है। तो ड्राइव सुरक्षित कीजिए, सतर्क रहिए और इस खूबसूरत सफ़र में म्यूज़िक को अपना साथी बनाइए। अब बढ़ते हैं अगले शानदार गाने की ओर। आवाज़ थोड़ा सा तेज़ कीजिए और ऑफकोर्स एन्जॉय कीजिए ये बेहतरीन सॉन्ग्स ओनली ऑन MGM 90.8 FM। साथ है तो बात है।

आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। शाम का वक्त सिर्फ दिन खत्म होने का नहीं बल्कि एक छोटी सी चेक इन का भी होता है। जरा सोचिए, आज सुबह आपने जो टू डू लिस्ट बनाई थी उसमें से कितने काम पूरे हुए हैं? अगर सारे काम पूरे हो गए हैं तो खुद को एक छोटी सी शाबाशी जरूर दीजिए, और अगर कुछ काम बाकी रह गए हैं तो बिल्कुल परेशान मत होइए। हर दिन परफेक्ट नहीं होता, और परफेक्ट हो ये ज़रूरी भी नहीं है। ज़रूरी ये है कि हम हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते रहे। कई बार हम पूरे दिन इतना काम करते हैं कि अपनी छोटी छोटी उपलब्धियों पर ध्यान ही नहीं दे पाते। इसलिए आज अपनी टू डू लिस्ट के साथ एक और लिस्ट बनाइए उन कामों की जो आपने अच्छी तरह पूरे कर लिए हैं। यकीन मानिए, इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और कल की शुरुआत भी पॉजिटिव होगी। और हाँ, अगर कल के लिए कोई ज़रूरी काम है तो उसे अभी नोट कर लीजिए। इससे दिमाग हल्का रहेगा और शाम भी सुकून से बीतेगी। तो इस खूबसूरत शाम में खुद को थोड़ा सा समय दीजिए, अपनी छोटी छोटी जीतों को सेलिब्रेट कीजिए और म्यूजिक के साथ रिलैक्स कीजिए। अब वक्त है एक और शानदार गाने का। आवाज़ थोड़ा बढ़ाइए और अपनी शाम को म्यूजिक के साथ और भी खूबसूरत बनाइए। ओनली ऑन एमजे 90.8 FM साथ

0: सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। उम्मीद है कि आज की ये शाम आपके लिए सुकून भरी रही होगी। हमारे साथ बिताए हुए ये पल, पसंदीदा गाने और छोटी छोटी बातें आपके चेहरे पर मुस्कान लेकर आई होगी। अगर ऐसा हुआ है तो हमारी मेहनत सफल हो गई है। याद रखिए, जिंदगी चाहे कितनी भी बिजी क्यों ना हो, अपने लिए थोड़ा वक्त निकालना बहुत ज़रूरी है। अपनों के साथ कुछ पल बिताना, मुस्कुराना और हर दिन को नई शुरुआत की तरह जीने की कोशिश कीजिए। अगर आज का कोई गाना या कोई बात आपको पसंद आई हो तो हमें ज़रूर बताइए। आपकी मैसेजेस और प्यारे हमें हर दिन आपके और करीब लाते हैं। अब मैं चलती हूँ, लेकिन कल फिर से इसी समय एक नई एनर्जी, नई बातें और आपके पसंदीदा गानों के साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड ऑफ कोर्स सुनते रहिए MGM 90.8 FM। साथ है तो बात है।
1: पाळीव प्राण्यांच्या आरोग्याची खास काळजी MGM पेट केअर पेट क्लिनिक। आरोग्य तपासणी, उपचार, शस्त्रक्रिया, लसीकरण आणि अनेक पशुवैद्यकीय सेवा एकाच ठिकाणी। MGM क्रिकेट स्टेडियम जवळ N6। कॉन्टॅक्ट नंबर 9860679130। MGM पेट केअर।
2: कायद्याच्या क्षेत्रात उज्ज्वल करिअर घडवायचंय, मग MGM युनिव्हर्सिटी आहे तुमच्यासाठी सज्ज।
3: 12वी नंतर 5 वर्षांचा इंटिग्रेटेड BBA LLB आणि 10वी नंतर 3 वर्षांचा LLB हा पदवी प्रोग्राम निवडा। पदव्युत्तर शिक्षणासाठी LLM मध्ये क्रिमिनल तसेच कॉन्स्टिट्यूशन किंवा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मध्ये 2 वर्षांचा तर बिझनेस लॉ मध्ये 1 वर्षाचा विशेष कोर्स उपलब्ध आहे। यासोबतच टॅक्सेशन आणि लेबर लॉ मध्ये करिअर ओरिएंटेड डिप्लोमा प्रोग्राम करण्याची सुवर्ण संधी मिळवा।
2: अधिक माहितीसाठी भेट द्या स्कूल ऑफ लीगल स्टडीज अँड रिसर्च MGM युनिव्हर्सिटी किंवा विजिट mgmu.ac.in।
4: डिनर का मूड हो या फॅमिली आउटिंग, टेस्ट और MBS दोनों चाहिए तो आ जाइए मीनास किचन। यहाँ मिलेंगे डिलीशियस वेज नॉनवेज सूप, टेस्टी स्टार्टर्स, मलाई टिक्का कबाब, चिकन तंदूरी, मटन बुना और मीनास स्पेशल चिकन बिरयानी, रूफटॉप एम्बियंस, अमेजिंग टेस्ट और फुल फैमिली वाइब्स। मीनास किचन फैमिली गार्डन रेस्टोरेंट एंड चीयर्स कॉर्नर, बॉम्बे हाइट्स 9th फ्लोर, बीड बायपास रोड, छत्रपती संभाजीनगर।
2: फार्मसी मध्ये गुणवत्ता आणि संशोधन पूर्ण शिक्षणासाठी
5: MGM विद्यापीठाच्या डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल सायन्स मध्ये प्रवेश घ्या,
2: जिथे डिप्लोमा इन फार्मसी अँड बॅचलर ऑफ फार्मसी मध्ये ऍडमिशन सुरू। ऑल्सो डायरेक्ट ऍडमिशन इन बी फार्मसी सेकंड इयर। अवेल अट्रॅक्टिव्ह स्कॉलरशिप्स,
5: अत्याधुनिक अशी लॅबोरेटरी, उच्च शिक्षित आणि अनुभवी स्टाफ, भव्य दिव्य असा MGM कॅम्पस। गुणवत्ता आणि दर्जेदार शिक्षणासाठी आजच प्रवेश निश्चित करा।
2: फॉर ऍडमिशन कॉन्टॅक्ट 9371714265 और विजिट www.mgmu.ac.in।
6: एडमिशन ओपन MGM यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। प्रोग्राम्स BTech 4 इयर्स आफ्टर HSC, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, IoT, साइबर सिक्योरिटी इंक्लूडिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, साइबर सिक्योरिटी, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, VLSI डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन। फॉर एडमिशन विजिट mgmu.ac.in और कॉन्टैक्ट 9371714253 और विजिट MGM कैंपस N6 सिडको छत्रपति संभाजीनगर।

अगर आपके जेब में पैसा है तो आपको कोई रोक नहीं सकता, और ये सच बात है। You are listening MGM 90.8 FM, RJ अदनान आपके साथ है। और जिन लोगों के जेब में पैसा नहीं है उनको ही रूल्स और रेगुलेशन होते हैं, उनको ही गाड़ी चलाते वक्त सीट बेल्ट पहनना पड़ती है, उन्हें ही हेलमेट पहनना पड़ते हैं, उन्हें ही सिग्नल पर रुकना पड़ता है, उन्हें रॉन्ग साइड से नहीं जाना पड़ता है जिनके पास पैसा ना हो। और जिनके जेब में पैसा हो तो ये रूल्स और रेगुलेशन ये उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है, वो रूल्स तोड़ते हैं और पुलिस वाले के हाथ में हरी पत्ती देते हैं और चले जाते हैं, उनका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। ऐसा साबित हो गया है बहुत बार, लेकिन इंसान अपनी गलती नहीं मानता ना। तो आप प्रूफ के साथ एक वीडियो वायरल हो रहा है अपने शहर का एक क्रांति चौक में, जहाँ पर एक ट्रैफिक पुलिस वाले ने दो गाड़ियां पकड़े थे और उसके बाद कार्रवाई करने के बदले जिनकी गाड़ी पकड़ी गई थी उनसे रिश्वत ली गई हरी पत्ती की, और उसके बाद वो गाड़ी छोड़ दी गई। ऐसा सरेआम हो रहा है और इसका वीडियो वायरल हो रहा है। पुलिस डिपार्टमेंट कह रहा है कि हमने उस बंदे को सस्पेंड किया है, कार्रवाई की है, लेकिन वो एक है, ऐसे कितने सारे पुलिस है जो कि रिश्वत लेकर छोड़ देते हैं, और ये सभी की नजरों के सामने, भाई किसी से कोई छुपा नहीं है। तो वही कह रहा हूँ ना, अगर आपके जेब में पैसा होना आप बिंदास रूल्स ब्रेक कीजिएगा। आपको फाइन भरने की भी जरूरत नहीं है, फाइन 1,000-2,000 का होता है, आप बस 200-400 रुपए थमा दीजिएगा हाथ में और आप छूट जाओगे ना, अगर आप ईमानदार हो तो। भाई ये सब रूल्स और रेगुलेशन आपके लिए है, ईमानदार हो रूल फॉलो करो, और जेब में पैसे हो तो ब्रेक करो, बाकी आपकी मर्जी। स्टे ट्यून्ड।

हमारे शहर की पहचान एक और है, वो हमारे शहर का इतिहास है और हमारी जिम्मेदारी है। आप सुन रहे हो आरजे अदनान के साथ MGM 90.8 FM। और जरा सोचिए, जिस पुल पर हम रोज बिना सोचे समझे गुजरते हैं, वो पुल लगभग 350 साल पुराना हो सकता है। जी हां, अपने शहर में मकाई गेट है जो कि 350 साल पुराना हो चुका है और आज भी हजारों लोगों का बोझ उठाता है। लेकिन वक्त के साथ इस पुल पर ट्रैफिक बढ़ता गया और अब एक्सपर्ट का कहना है कि इसके नीचे कुछ जगहों पर दरारें नजर आ रही है। इसी वजह से इस पुल को मेंटेनेंस करने की जरूरत आ चुकी है। पुरातत्व विभाग ने एक प्रपोजल तैयार किया है जिसके अंदाजे से लगभग 3 करोड़ रुपए इसको खर्चा आ सकता है, लेकिन अलग अलग डिपार्टमेंट के बीच जिम्मेदारियों की वजह से काम बस शुरू होने का नाम ले ही नहीं रहा। जो अपने शहर की विरासत है, जो आइडेंटिटी है, उसको बरकरार रखती है ये अपने शहर के ब्रिजेस हो, यहाँ के गेट हो और इस शहर का इतिहास हो। बाय द वे, जरा सोचिए अगर ये पत्थर बोल पाते तो कितनी कहानियां सुनाते। मुगल दौर देखा है, निजाम का वक्त देखा है, आजादी देखी है और आज का मॉडर्न शहर भी उसने देखा है। ये सिर्फ पत्थरों का पुल नहीं है, ये हमारी शहर की यादों का पुल है। इसलिए जरूरत है फिलहाल इसको मेंटेनेंस की। बस ये एक ब्रिज नहीं, अपने शहर में बहुत सारे ऐसे ब्रिजेस हैं जो कि बहुत सालों से है, अपने शहर का इतिहास लेकर वो खड़े हैं। ब्रिज हो, गेट हो, कुछ किले हो, तो इन सभी को फिलहाल रिनोवेशन की जरूरत है। आई होप कि जल्द से जल्द इसका रिनोवेशन हो जाए और अपने शहर का इतिहास ऐसे ही बरकरार रहे हम सभी के नजरों के सामने। अभी कब तक काम शुरू होगा ये तो कुछ आइडिया नहीं, जल्द से जल्द हो जाए इतनी एक तमन्ना है। स्टे ट्यून्ड।

इंडियन रेलवे से जब हम ट्रैवल करते हैं और कुछ असुविधा के लिए हम इंडियन रेलवे को कोसते हैं ना, तो थोड़ा हमारे गिरेबान में भी हमने झांकना चाहिए। आप सुन रहे हो आरजी अदनान के साथ MGM 90.8 FM। आप कह रहे होगे कि यार खुद के गिरेबान में क्यों झांके, हमने क्या किया है भाई साहब? दूसरों पर उंगली उठाने के पहले खुद की तरफ भी चार उंगलियां होती है, ये याद रखिएगा। क्योंकि एक रिपोर्ट के हिसाब से इंडियन रेलवे में जो ट्रैवल करते हैं, थर्ड एसी, सेकंड एसी और फर्स्ट एसी, आप इन तीनों में ट्रैवल करने वाले लोग थोड़े पैसे वाले और उम्दा कैटेगरी के, ऐसा माना जाता है कि जिनके पास पैसा होता है जो एसी में ट्रैवल करना पसंद करते हैं और टिकट के पैसे ज्यादा है तो सुविधाएं भी अच्छी खासी मिलती है। तो इन्हीं लोगों ने क्या किया है पिछले 4-4.5 साल के अंदर, तकरीबन तकिया, तकिए का कवर, चादर, टॉवल, ये सब पूरा चोरी कर दिए गए है। और 1-2 हजार के नहीं या 2-3 लाख रुपए के नहीं, तकरीबन 4.5 साल के अंदर 100 करोड़ से भी ज्यादा कीमत की सभी चीजें थी, इनको चोरी कर दिया गया है पैसेंजर ने। इस तरीके से चोरियां हो रही है। और यह कौन करता है? वही जो ट्रैवल करते हैं ना, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड एसी।

0: डिनर का मूड हो या फैमिली आउटिंग, टेस्ट और एम्बियंस दोनों चाहिए तो आ जाइए मीनास किचन। यहाँ मिलेंगी डिलीशियस वेज नॉनवेज सूप, टेस्टी स्टार्टर्स, मलाई टिक्का कबाब, चिकन तंदूरी, मटन बोना और मीनास स्पेशल चिकन बिरयानी, रूफटॉप एम्बियंस, अमेजिंग टेस्ट और फुल फैमिली वाइब्स। मीनास किचन फैमिली गार्डन रेस्टोरेंट एंड चीयर्स कॉर्नर, बॉम्बे हाइट्स 9th फ्लोर, बीड बायपास रोड, छत्रपति संभाजीनगर।
1: फार्मसी मध्ये गुणवत्ता आणि संशोधन पूर्ण शिक्षणासाठी
2: MGM विद्यापीठाच्या डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल सायन्स मध्ये प्रवेश घ्या,
1: जिथे डिप्लोमा इन फार्मसी अँड बॅचलर ऑफ फार्मसी मध्ये ऍडमिशन सुरू। ऑल्सो डिरेक्ट ऍडमिशन इन बी फार्मसी सेकंड इयर, अवेल अट्रॅक्टिव्ह स्कॉलरशिप्स,
2: अत्याधुनिक अशी लॅबोरेटरी, उच्च शिक्षित आणि अनुभवी स्टाफ, भव्य दिव्य असा MGM कॅम्पस। गुणवत्ता आणि दर्जेदार शिक्षणासाठी आजच प्रवेश निश्चित करा।
1: फॉर ऍडमिशन कॉन्टॅक्ट 9371714265 और विजिट www.mgmu.ac.in। ऍडमिशन ओपन MGM University School of Engineering and Technology. Programs BTEC 4 years after HSC, Computer Science and Engineering, IoT, Cyber Security including Blockchain Technology, Computer Science and Engineering, Cyber Security, Electronics Engineering, VLSI Design and Technology, Electrical Engineering, Robotics and Automation. For admission, visit mgmu.ac.in or contact 9371714253 or visit MGM Campus N6 Sidco, Chhatrapati, Sambhajinagar.

0: फक्त इंजिनियर नव्हे तर फ्युचर रेडी प्रोफेशनल बनायचंय,
1: मग निवडा MGM विद्यापीठातील केमिकल इंजिनिअरिंग. सोबत शिका AI इन केमिकल इंजिनिअरिंग, AIML, डेटा सायन्स, बिझनेस अनालिटिक्स आणि फिनटेक स्पेशलायझेशन.
0: जागतिक दर्जाच्या लॅब्स, हँड ऑन प्रॅक्टिकल लर्निंग आणि NEP 2020 नुसार आधुनिक अभ्यासक्रम,
1: डेडिकेटेड ट्रेनिंग अँड प्लेसमेंट सपोर्ट, MNC कोलॅबोरेशन, इंडस्ट्री व्हिजिट आणि टॉप केमिकल इंडस्ट्री मध्ये इंटर्नशिप.
0: लिमिटेड सीट्स, आजच MGM विद्यापीठ केमिकल इंजिनिअरिंग डिपार्टमेंटला भेट द्या किंवा कॉल करा 98 91 71 78 44.
2: डिनर का मूड हो या फैमिली आउटिंग, टेस्ट और MBS दोनों चाहिए तो आ जाइए मीनास किचन. यहाँ मिलेंगे डिलीशियस वेज नॉन वेज सूप, टेस्टी स्टार्टर्स, मलाई टिक्का कबाब, चिकन तंदूरी, मटन बुना और मीनास स्पेशल चिकन बिरयानी, रूफ टॉप एम्बियंस, अमेजिंग टेस्ट और फुल फैमिली वाइब्स. मीनास किचन फैमिली गार्डन रेस्टोरेंट एंड चीयर्स कॉर्नर, बॉम्बे हाइट्स 9th फ्लोर, बीड बाईपास रोड, छत्रपति संभाजी नगर.
3: क्या आप ऐसा करियर चुनना चाहते हैं जहाँ आपके भविष्य के साथ समाज का भी भविष्य बदले? तो आइए MGM यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी साइंस में, जहाँ डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, BSc ऑनर्स कम्युनिटी साइंस विद रिसर्च और ऑल्सो MSc स्पेशलाइजेशन इन फूड न्यूट्रिशन एंड डायटिक्स, एक्सटेंशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज विद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एंड रिसर्च ओरिएंटेड एजुकेशन. एडमिशन ओपन फॉर 2026-27. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल ऑन 7620322186 और 7017085546. MGM यूनिवर्सिटी
4: कॉस्मेटिक टेक्नॉलॉजीच्या UG आणि PG साठी ऍडमिशन मिळवा. BTech आणि MTech कॉस्मेटिक टेक्नॉलॉजी साठी MGM युनिव्हर्सिटी मध्ये बेसिक अँड अप्लाइड सायन्सेसच्या अंतर्गत आजच आपला प्रवेश निश्चित करा,
5: ज्यामध्ये सर्व प्रकारच्या कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्सचे फॉर्म्युलेशन, रॉ मटेरियल्स, त्यांची केमिस्ट्री आणि अनालिसिस, सोबतच न्यू ऍडव्हान्स टेक्नॉलॉजी ही शिकण्यास मिळेल. शिवाय विविध नामांकित कंपन्यांमध्ये प्लेसमेंटची हमी सुद्धा.
6: ऍडमिशन्स ओपन फॉर 2025-26. MGM युनिव्हर्सिटी N6 सिडको. व्हिजिट MGMU.ac.in. Call 950-308-2913.

रंग दिलदार यहाँ, लाखों दिलों की बहार यहाँ, पर ये बात कहाँ है। हाँ जी हाँ, और भी होंगे दिलदार यहाँ, लाखों दिलों की बहार यहाँ, पर ये बात कहाँ। ये बेमिसाल हुस्न ला

कीड़े सूट पहनकर कैसा कूदे फांदे, कौवा जैसे पंख मयूर का अपने दुम में बांधे, अपने दुम में बांधे, अपने दुम में बांधे।